गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा है पर गुरमुख सतसंगत दी कुखों जन्म लैंदा सतसंगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उस नूं गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबू वंडदा है ए गुरमुख दा दान है गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी

बंसरी बजदी, बजाउण वाला बंसरी बजाउंदा है, वजाई जांदा, बंसरी वजी जांदी, वजाउण वाला वजाई जा रहा है, वजाउण वाले नूं वजाउंदिआं वजाउंदिआं ना तां खाण दी भुख, ना कोई प्यास दिखाई देंदी, ना पता चलता इसने आराम भी करना। बंसरी वजदी जा रही है, वजाउण वाला वजाई जा रहा है, पर इउं लगदा है हुण तां बंसरी वजाउण वाले नूं वजाउण लग पई है। सतनाम श्री वजाउण वाला बंसरी विच ही गवाच गया, वाजा वजाउण वाला वाजा वजाउंदा सी, वजाउंदिआं वजाउंदिआं उह लग्या हुण तां वाजा वजाउण वाले नूं वजाउण लग पिआ। वजाउण वाला गवाच गया, कोई शब्द का अभ्यास करता सी, गुरु दे दिते गुरमंत्र का अभ्यास करता सी, कोई गुरु दे दिते हुए शब्द का अभ्यास करता सी, करदा ही गया करदा ही गया करदा ही गया, इउं लग्या हुण तां शब्द अभ्यासी नूं अभ्यास कराउण लग पिया। जब सतनाम श्री वाई ओ अभ्यास करन वाला गुर शब्द विच ही गवाच गया, समा गया, अभ्यास करन वाला जीरो बन गया। अभ्यास करन वाले दी मैं मर गई, जिस दी मैं मर जाए वो तां कदे नहीं मरदा। जब सतनाम श्री मरदे ओ ने जिन्हां दी जीवन विच मैं नहीं मरी, वो तां जीउंदा ही मर जांदे, ते जिन्हां ने जीवन विच गुरु शब्द दा अभ्यास करके, जिन्हां दे जीवन शब्द ने अभ्यासी नूं अभ्यास ते लगा के उन्हां दी मैं मार दित्ती, वो मुड़ के कदे नहीं मरे। शब्द मरो फिर जीव सद ही बहुर मरन ना कोई। अज सतगुरु ओही गल कह रहे, जेड़े गुरु दे शब्द विच समा गए उन्हां नूं मरिया होया ना आखना। जब सतनाम श्री कदे भुल के भी किसे गुरमुख नूं ना कहना कि गुरमुख मर गया। मरदे

लगी अपने पति कोलों आग्या मंगदी है। स्वामी चली जावा, ये सिर हिला देंदा है। छोटा जिहा बच्चा इसनू बोटल दे विच दुध दे जांदी है ते सेवा ते टुर जांदी है। सारा दिन सेवा कर दी ते शाम नू घर आंदी है। अज सेवा कर दिया 16 दिन बीते ने। जदों 16वां दिन आया अपने घरों तुरन लगी रोजाना दी तरह। बच्चा जो मंजे ते लेटिया होया है, बीमारी नाल बिलक रहा है, उसनू दुध वारी बोतल पकड़ाई ते अपने

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार की पीछे कलयुग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड्डा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करी।

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानक सर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेडे सुन लैणगे ओह भी सार संगत पछताउणगे, जेडे ना सुनणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दियां लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं आउंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए शायद, 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बुलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए? दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे बाबा, इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह पुच्चो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी नानसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामन चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पाणी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे जिया नहीं।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन नु पालना। पहला निर्धन नु पालना गुरु का सिख दसवंद कढ़े। सारे चाती पायो अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा कोई माया का दसवंद नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन नु पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लिखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नु किहड़े ढंग नाल पालदे ने। उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असी किते पहुंच भी नहीं सकदे। उत्थे वह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण पहला निर्धन नु पालना गुरु का सिख दसवंद कढ़े। सारे झाती पायो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਵੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ।

पिता जी मेरे निरंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना कहो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सर जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दियां पुब्बा निकली। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया।

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैण इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कदे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तों मक्खण चुक के मूंह च पा लैंदा सी। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खण तू खा, मक्खण तू खा, तली उत्ते मक्खण पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड्या पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचिव पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह? हजूर कहन लगे हां मरदाने तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गईयां न पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विन दी चीजा परोम दीए, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची। मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 साल तो बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन कि भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या मरदाने ए पढ़ की

अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहा है सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटपाउंदा आखो श्री वाहिगुरु मरदाने हुण बोली ना बेवे नानकी दी आस पूर्ण करनी है हजूर आए अगौली आके बेबे नानकी दी हथां तों मक्खण चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सूरत कन्ना विच लै के ए आवाज तो मेरे वीरन दी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हथ बेबे दा सिर अपने हथा ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सी रोक दई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन ठग नूं संत बनाया है वली कन्हारी दा मान तोड़िया है पत्थर नूं पंजे लगा के मोम करन वालिया तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नूं मिले हो कि नहीं बेबे पहला तेरे कोल आया मां नूं भी मिलो हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुध पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गनुंगड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखो श्री भाई नेत्र खुल गया अज माता तृप्ता नु 12 साल दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखो श्री भाई गुरु मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलिया वाली गंढ लियांदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्तर नू एक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो श्री भाई वेख वेख वेख करदी है ते कहंदी है नानक हुण ना बार जाई नानक जी अम्मी पिता नू भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नू भी मिल तेरे प्यार दीवाने होए फिरदे हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार की थी ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक आज मेरी अखा खुल गई मेरे अगे मथा न टेक मैं कल जुगी जी बंदा गंदा हां तू रब्बी नूर ना पिता जी मर्यादा रखनी कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नू मिले हो के नहीं पिता जी फिर राय बुलार नू मिले हजूर सुर पे अज सारियां नू दर्शन देंदे देंदे जिस वेले राय बुलार कोल आए राय बुलार रो रहा है ते पे कहंदा है कि सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जप नाम दे सदके नाम ही मिल जाएगा तो आओ प्यारी साथ संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजी लगवा रहा है ते इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े ते प्यार है एक वेरी वड्डे बाबा जी दिल्ली दियां संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू राजेंद्र नगर है इथे पहला खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां रसले जंगल ही जंगल सी बाबा जी ने इथे बख्शिश कीती पर जिहड़े आशिक सन ओह रोज पहुंचदे सन प्यारी साध संगत पटियाले दे रहण वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तों दिल्ली दर्शन करन वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मध्य सन उन्हां कोल ठहरे अमृत वेले बाबा जी दे दर्शन करन वास्ते जाण लगे
تو رائے باد نرائن سنگھ جی کہنے لگے ہرچند سنگھ اسی بھی نال چلیں گے جی صدقے چلو جی کار اچ بیٹھے آ گئے اگے کیرتن ہو رہا ہے امرت ویلے آسا جی دی وار دا تو بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہندے سن براگن لگائی ہے ہن بھی کر لو درشن براگن لگا کے مستی جھوم رہے ہیں تے پیاری سات سنگت بارش شروع ہو گئی ایوان نہیں سی کوئی اتنے چھت نہیں سی باہر دیوان سجیا ہوا سی تو بابا جی نے اشارہ کیتا بھائی کیرتن کرن والے اتنے کپڑے تان دیتے تے بابا جی نے راگی سنگھ نو کہا اے تو کام پڑھو کہڑیاں آپاں بھی پڑھ لی

छा नाम अधारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

0: प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो
1: नानक शरण पर्यो दुख भंजन

0: परिधान जगपुरो
1: करुणालय है
0: अर्थालय है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है।
1: हे प्राणनाथ गोविंद
0: कृपा निधान जगदगुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

फिर कुछ मंगण दी लोड़ नहीं रही है। ओ दाता वंडन वाले हो गए जिन्हां ने दातार नू मंग लिया। नौ प्रकार दी भगती दसी है और सारियां भगतियां विचों उत्तम भगती है कलयुग दे विच। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जागदी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि भगतियां विचों प्रधान भगती है। जपां सिर जप है, तपां सिर तप है, कर्मन सिर कर्म है। जो सत संगत विच बह के कीर्तन दी समाधि ला के जपना श्री वाहेगुरु उत्तम भगती है। कीर्तन दी भगती आख्या जिन्ना ने कीर्तन विच समाधि जोड़ ली मन जोड़ लिया वो आप ही नहीं तरे आप तरे सगले कुल तारे। सारियां कुलां उन्हां दियां तर गईयां हर दरगह पत स्यों जाएंदा। संसार विच भी उन्हां दी जय जयकार ते दरगाह विच भी फिर रे रे दरगह कहे ना को आओ बैठ आदर सब देव। ओ आदरणीय हो गए भाई जिन्हां ने गुरु को नो